0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष

प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: काय म्हणला?
1: एक हंस पूर्व महाराज
0: अवपर सांगाल का नाही?
1: एक हंस

0: www.rtv.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहा है। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी

0: अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
1: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायु

0: सेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
1: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की

0: 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड मॉर्निंग मुंबई, स्वागत है आप सभी का. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 MHz पर. मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे दोस्त रेहान. 8:40 हो चुके हैं सुबह के और मस्त मुंबई कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की इस खूबसूरत ट्रैक के साथ.

0: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू शर्तें लागू आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

मस्त मुंबई कार्यक्रम का आगाज़ हो चुका है दोस्तों। 8:54 और मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। अभी आपने शान और गायत्री एयर की आवाज़ों में यह खूबसूरत ट्रैक सलाम नमस्ते से सुना। इस ट्रैक को अपने म्यूज़िक से सजाया था विशाल शेखर ने और बोल लिखे थे जयदीप साहनी ने। और अगर हम आज की बात करें, आज यानी कि बुधवार तारीख जो है वो 27 मई की है, तो बॉस हफ्ते का जो है आधा सफ़र यूं तो तय हो चुका है, यानी कि मिड वीक आ गया है। और इस तपती मुंबई की सुबह अगर कोई चीज़ हमारे ऑफिस और कॉलेज बिना थके पहुंचाती है तो वो है हमारी मुंबई की लोकल। जी हाँ, और आज बुधवार के दिन इस कार्यक्रम जिसका नाम है मस्त मुंबई में हम बात करते हैं मुंबई के मतवाले यानी कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई के लोकल की कुछ दिलचस्प कहानियाँ। तो आज भी कुछ ऐसी ही वायरल कहानियों के साथ लेकर मैं हाजिर हूँ। और ये लाइफलाइन जो रोज़ लाखों धड़कनों को एक साथ जोड़ती है, और आज के इस फैंसी डे स्पेशल के एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ लेकर हाजिर हैं जिन्होंने मुंबई लोकल के असली जज्बे को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। इसमें माहौल को थोड़ा और सुहाना बनाते हैं और सुनते हैं अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल की

0: ये दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

सुबह के 9:06 हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं इसके लिए और्स एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। मस्त मुंबई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आज मस्त मुंबई में सेगमेंट है मुंबई के मतवाले, और मुंबई के मतवाले के तहत मुंबई की कुछ लोकल ट्रेनों की कुछ दिलचस्प वायरल कहानियाँ लेकर मैं हाजिर हूँ। और अगर हम बात करें मुंबई लोकल की, तो सोचिए अगर कोई शख्स जो है आखिरी बार मुंबई लोकल का सफ़र कर रहा है तो वो कैसे इसे एंजॉय करेगा। कुछ ऐसी ही एक वायरल कहानी 23 अप्रैल 2025 को इकोनॉमिक टाइम्स में छपी थी, और ये स्टोरी जो है काफ़ी वायरल हुई थी। जब कोई इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा होता है तो उसका जो आखिरी लोकल का सफ़र होता है वो कैसा होता है, यही इस आर्टिकल में जो है दर्शाया गया था, जहां एक लड़के ने दूसरे शहर में शिफ्ट होने से पहले अपने रोज़ के ट्रेन बडीज यानी कि दोस्तों को भरी भीड़ भरे जो है लोकल ट्रेन की डिब्बों में ही फेयरवेल पार्टी की और जश्न मनाया और लोगों को विदा कहा। और यही खूबसूरती है मुंबई के लोकल और मुंबई की भी, जहां अजनबी भी दो दिन में परिवार बन जाते हैं। तो स्टोरी काफ़ी वायरल हुई थी कि इस लड़के ने किस तरीके से फेयरवेल पार्टी दी, वो भी भरी भीड़ के लोकल ट्रेन में, और उस जज्बे को लोगों ने सलाम किया था। जब ये स्टोरी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी तब लोगों ने खूब लाइक और शेयर किए थे और मुंबई के इस जज्बे को जो है सलाम किया था। तो आइए अमित मिश्रा शिल्पा राव की आवाज़ों में अब इंजॉय करते हैं ये दिल है मुश्किल का ये ट्रैक।

0: हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।
1: डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित,
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: EKYC,
2: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
2: कॉस्मोस रूपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आपने रश्मि सिंह द्वारा लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत ये गीत सुना जिसे हमने लिया था फिल्म सिटी लाइट्स से, और संगीत दिया था इस गीत के लिए जीत गांगुली ने। 9:22 मस्त मुंबई कार्यक्रम चल रहा है और मैं हूं आपके साथ आपका आरजी दोस्त रेहान। वैसे तो मुंबई लोकल के डिब्बों में इंसानियत की ऐसी मिसालें भी दिखती हैं जिसे देखकर हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं। हाल ही में एक सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक स्टोरी जो है वायरल हुई थी जिसे देख कर हर कोई जो है इंसानियत की मिसाल जो पेश किया गया था उसके लिए जो है उस शख्स को सलाम कर रहा था। दरअसल लोकल ट्रेन का जो एक ड्राइवर है उसने चलती ट्रेन को सिर्फ इसलिए रोक दिया था ताकि लाठी के सहारे चल रही एक बुजुर्ग महिला सुरक्षित डिब्बे में चढ़ सके। ये पूरी घटना जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और ये वीडियो भी लोग खूब देख रहे थे, और इस वीडियो को देखने के बाद लोग जमकर कमेंट भी कर रहे थे सोशल मीडिया पर और अपने व्यूज़ भी शेयर कर रहे थे, लाइक भी कर रहे थे। और जिस तरह से उसने इंसानियत की मिसाल जो है पेश की थी उसे लोग सलाम कर रहे थे। चलिए इस खूबसूरत एहसास को और आगे बढ़ाते हैं इस सदाबहार नगमे के साथ जिसे अपनी आवाज़ों से सजाया है सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी और साथियों ने।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

तो दोस्तों मस्त मुंबई कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं आरजे रेहान के साथ। 9:31 हो गए हमारे स्टूडियो की घड़ी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकली हर्ट्ज। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। मुंबई लोकल के दिलचस्प कहानियों की हम बात कर रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी जो है एक अखबार में जब छपी तो लोगों ने उस महिला को भी सलाम किया, और ख़ासकर अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं कि रात के वक्त शहर में और यहाँ की ट्रेनों में कितनी सुरक्षित हैं हमारी महिलाएं। तो इस पर एक कामकाजी महिला राधा का ट्वीट जो है पिछले दिनों चर्चा में आया था, जब राधा ने हिंदुस्तान टाइम्स की विशेष रिपोर्ट में बताया था कि रात के 11 बजे भी जब वो लेडीज़ कोच में चढ़ती हैं तो वो जब भरा हुआ होता है खचाखच और पुलिस की मौजूदगी में वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हैं। और वैसे भी अगर हम अपनी लेडीज़ स्पेशल ट्रेन की बात करें तो हाल ही में इस ट्रेन ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। वेस्टर्न रेलवे की इस मशहूर लेडीज़ स्पेशल ट्रेन ने अपने 34 साल पूरे कर लिए हैं, और इस मौके पर एक सेलिब्रेशन भी किया गया था जहां पर महिला यात्रियों को गुलाब का फूल देकर उन्हें सम्मानित किया गया था। सोचिए वो लम्हा जो है कैसा रहा होगा जब महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा होगा। और हमारी लोकल ट्रेनों में आजकल जब भी हम बात करते हैं तो भीड़ की बात करते हैं, लेकिन इन भीड़ के बीच भी ये कहानियां जब सामने निकल कर आती हैं तब हमारा दिल जो है कहीं ना कहीं इमोशन से, भावनाओं से भर जाता है कि इतनी सारी परेशानियां होते हुए भी हम जो लोकल ट्रेनें हैं जो लाखों दिलों की धड़कनों को जोड़ती हैं, एक दूसरे राज्यों की संस्कृति का आदान प्रदान करती हैं, दुख और सुख में लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, वो कितनी जो है कहानियां लेकर अपने साथ चलती है। लगी अली की आवाज़ में फ़िलहाल इंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

0: Smart Digital Banking सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: EKYC
1: NEFT RTGS
0: IMPS
1: Cosmos रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट Cosmos बैंक में जरूर होना चाहिए.
1: Cosmos Cooperative Bank, Enriching Life.
2: सुबह के 9:45 दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर म्यूजिकली और सब. मैं हूं आपका आरजे दोस्त रेहान. मस्त मुंबई कार्यक्रम में मुंबई की लोकल ट्रेनों से जुड़ी कुछ कहानियां आप तक शेयर कर रहा हूं. एक तरफ जहां इतनी खूबसूरत कहानियां हैं, वहीं दूसरी तरफ तेज़ रोज़ की भीड़ में एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम रोज़ जूझते हैं अपनी यात्रा को लेकर. और हाल ही में एक वायरल रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया था कि कैसे पीक आवर्स में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर दरवाजे पर लटकते हैं. और इसके अलावा जो है ये चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि अभी भी बुनियादी ढांचे में सुधार की बहुत ही ज़रूरत है. लेकिन इन सब के बीच मुंबई का ये विजुअल किसी जादू से कम नहीं होता कि लोकल ट्रेनें एक दूसरे को सीटियां मारकर क्रॉस कर रही हैं, गुजर रही हैं, और लोग जो हैं अपने अपने गंतव्य तक, अपनी अपनी मंजिलों तक, अपने अपने ऑफिसों में जा रहे हैं काम के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए. तो चलिए बुधवार की इस सुबह को और बेहतरीन बनाते हैं और आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि आप लोकल ट्रेन में यात्रा के दौरान अपना और अपने सहयात्रियों का भी ध्यान रखिए, उनका भी सम्मान करिए. और सुनिए उदित नारायण कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गाया ये खूबसूरत गीत.

सुबह के 9:53 हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम ब्रेन वो चैनल। और इस घंटे में ये आखिरी नगमा आप तक पहुंचाऊं उससे पहले कि मुंबई की लोकल कहानियों और वायरल जो ये रिपोर्ट्स हैं उसके बाद, अगर आज के दिन अगर हम बात करें आज के दिन की, आज है बुधवार 27 मई, और 27 मई के अगर इतिहास की बात करें तो कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए 27 मई को जाना जाता है। आज ही के दिन 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था, और 1937 में आज ही के दिन गोल्डन गेट ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ था, और आज ही के दिन 1951 में मुंबई में तारापुर वाला मछली घर का उद्घाटन हुआ था। आज ही के दिन 1703 में जो है सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की गई थी, और 1948 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा भी शुरू हुआ था। तो ये थी इतिहास की कुछ बड़ी घटनाएं, और फिलहाल सुनते हैं मस्त मुंबई कार्यक्रम का ये आखिरी गीत उदित नारायण की आवाज़ में। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे प्रमुख समाचार, और 10:02 पर कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हो जाऊँगा। नमस्ते भारत, सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का फ्रॉम ब्रेनपू चैनल।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर म्यूजिकल ईयर्स। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र प्रमुख समाचारों पर। भारत और अमेरिका ने कल महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर हुए। यह ऐतिहासिक समझौता दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल बागची के बीच की खंडपीठ जो है इस मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई थी। प्रतियोगिता में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपका अपना आरजे दोस्त रेहान। 10:02 हो गए हैं और कार्यक्रम नमस्ते भारत लेकर मैं हाजिर हूं और आज का सेगमेंट है जीते हैं शान से। और इस जीते हैं शान से में आज का जो विषय है वो है महिला एवं बाल जगत। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का इस खूबसूरत गीत के साथ।

अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत अभी आपने एंजॉय किया, 10:08। और जब भी हम किसी फिल्म की तारीफ करते हैं तो अक्सर उसका क्रेडिट जो है वो एक्टर्स ले जाते हैं, लेकिन उस पूरी दुनिया को रचने वाला पर्दे के पीछे छिपा कैप्टन ऑफ द शिप यानी डायरेक्टर होता है। और डायरेक्टर का नाम जो है ज़्यादा मशहूर नहीं होता या ज़्यादा नहीं लिया जाता। तो आज का ये पूरा घंटा हम सलाम करेंगे हिंदी सिनेमा की कुछ ऐसी मशहूर महिला फिल्म निर्देशकों को जिन्होंने न सिर्फ कमाल की फिल्में बनाई हैं बल्कि सिनेमा को देखने का हमारा नज़रिया भी बदल दिया है। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जो ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने की बात भी करता है। लेकिन उससे पहले फिल्म निर्देशक फराह खान की यह फिल्म मैं हूं ना की बात करते हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों के ज़रिए जो है एक नई मिसाल कायम की है और लोगों ने उनकी फिल्मों को खूब पसंद किया है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

मनु मालागे, श्रेया घोषाल और अजीत सिंह की आवाज़ों में ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना। 10:20 हो गए हैं और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत। और नमस्ते भारत में आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की कुछ महिला निर्देशकों की। और महिला निर्देशकों की जब भी बात होती है तो ये आज का सफ़र नहीं है, सिनेमा के शुरुआती दौर में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। फातिमा बेगम ने इसकी नींव रखी तो वहीं 70 और 80 के दशक में जब स्क्रीन पर सिर्फ मार धाड़ और एंग्री एंग मैन का राज था, तब एक महिला ने आम इंसान की सादगी को पर्दे पर उतारा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पद्म भूषण से सम्मानित सई परांजपे की। चश्मे बद्दूर जैसी लाजवाब कॉमेडी हो या फिर इस

स्पर्श जैसी संजीदा फिल्म। उन्होंने दिखाया कि बिना किसी तामझाम के भी बेहतरीन सिनेमा कैसे बनाया जाता है। चलिए इसी सादगी को महसूस करते हैं इसी सादगी भरे और खूबसूरत क्लासिक गाने के साथ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: Akashwani FM Rainbow.
2: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प.
3: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू.
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.

रुदाली फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत भूपेन हजारिका की आवाज़ में सुना आपने। सादगी के साथ साथ हमारी जो महिला निर्देशकें हैं उन्होंने समाज के कड़वे सच को भी पूरी बेबाकी से पर्दे पर रखा है। जब नाम कल्पना लाजमी का आता है तो उन्होंने रुदाली और दमन जैसी फिल्मों के जरिए समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी महिलाओं के दर्द, उनकी चीख और उनके भीतर की आग को दुनिया के सामने रखा। उनका सिनेमा हमें झकझोरता भी है और मजबूत भी बनाता है। आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म रुदाली का एक और गीत, और ये अमर संगीत जिसे भूपेन हजारिका ने अमर कर दिया अपनी आवाज़ से, अपनी रूह से भी। हालांकि इस गीत के एक वर्जन, दो वर्जन बनाए गए, एक जो है भूपेन साहब ने गाया और दूसरा लता जी ने, और दोनों ही गीत रुदाली फिल्म के क्लासिक गीत हैं हिंदी सिनेमा के। लेकिन फिलहाल यहाँ सुनते हैं भूपेन हजारिका को फिल्म रुदाली में।

10:38 और आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिल हूं हूं करें दोस्तों, जब भी ये गीत हम सुनते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बात एक ऐसी डायरेक्टर की जिनकी फिल्मों में ड्रामा भी होता है, थ्रिल भी होता है और बहुत कुछ ऐसा अनोखा नजरिया भी, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं रीमा कागती की। जी हाँ, हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कल्ट फिल्म से शुरुआत करने वाली रीमा ने जब आमिर खान के साथ तलाश बनाई तो उन्होंने सस्पेंस के पीछे छिपे मानवीय दर्द और खोने के गम को बेहद खूबसूरती से दिखाया। वहीं गोल्ड जैसी फिल्म में उनकी देशभक्ति के जज्बे को नए ढंग से उन्होंने सिनेमा में बोला। आइए सुनते हैं रीमा कागती की फिल्म हनीमून प्राइवेट ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: सुबह के 10:45 दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स। और आखिरी पड़ाव पर यह कार्यक्रम अब पहुंच चुका है, और अगर हम बात जोया अख्तर की करें तो एक ऐसी महिला निर्देशक हैं जिन्होंने अपने अपने नए नए आइडियाज़ के जरिए और क्रिएटिव सिनेमा के जरिए लोगों को एंटरटेन किया है, और लक बाय चांस से उन्होंने निर्देशन की शुरुआत की और कई शानदार फिल्में जिसमें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी जो है फिल्में शामिल हैं उन्होंने बनाई और अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। तो सुनते हैं लक बाय चांस का ये खूबसूरत गीत।
3: मैं तनहारा, मैं मनहारा।

शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी लक बाय चांस। दोस्तों, अगर महिला फिल्म निर्देशकों की बात करें तो फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर कुंकना सेन शर्मा की बात करें तो वो बेहद ही शानदार एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक खूबसूरत और टैलेंटेड निर्देशक भी हैं। उन्होंने कई शानदार फिल्में भी बनाई हैं। इसके अलावा अगर बात करें अश्विनी अय्यर तिवारी, इन्होंने नीलबटे सन्नाटा जैसी खूबसूरत फिल्म बनाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। और इसके अलावा मेघना गुलजार, जिन्होंने राजी तलवार, छपाक जैसी फिल्में बनाकर जो है अपने आइडियाज़ और अपनी जो है डायरेक्टर की जो टैलेंट है उसको दिखाया है संवेदनशील कहानियों के ज़रिए। ज़िंदगी की जटिल कहानियों को बिना किसी लाउड ड्रामे के बेहद ही ईमानदारी के साथ उन्होंने पर्दे पर उतारा है। और चाहे वो जोया अख्तर हो, कोंकना हो, अश्विनी हो, या फिर मेघना हो, या फिर गौरी शिंदे, जिन्होंने इंग्लिश इंग्लिश जैसी फिल्म के ज़रिए जो है एक नई पहचान बनाई थी। किरण राव का नाम भी उसमें शामिल है, जहां लापता लेडीज़ जैसी फिल्में बनाकर

उन्होंने जो है अपनी पहचान और शोहरत की बुलंदी इस बॉलीवुड में हासिल की। फिर कभी जब मौका मिला इन महिला निर्देशकों के बारे में विस्तार से बात होगी, फिलहाल अब समय इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ। आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। आपसे फिर किसी दिन मुलाकात होगी इसी शो में। तब तक के लिए मुझे यानी अपने आरजे दोस्त रेहान को दीजिए अनुमति। नमस्कार और रखिए अपना ख्याल।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। और आइए नजर डालते हैं इस घंटे के प्रमुख समाचारों पर। भारत और अमेरिका ने कल महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर हुए। ये ऐतिहासिक समझौता दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। अगला समाचार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने कनाडाई समकक्ष मनिंदर सिंधु के साथ मिलकर कनाडा भारत निवेश गोलमेज की सह अध्यक्षता की। श्री गोयल ने कहा कि उन्होंने कनाडा के प्रमुख पेंशन फंड सावरेन और संस्थागत निवेशक, कनाडा भारत व्यापार परिषद के सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की। समाचार में आगे है, सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। और अंत में खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। समाचार समाप्त हुए।

0: हेलो दोस्तों, सुबह के 11:09 हो रहे हैं। मैं हूं आरजे गंधर्व और मेरे साथ हैं,
1: आरजे संतोष।
0: इस सेगमेंट का नाम है ब्रेक फ्री। दोस्तों, कभी कभी ना लाइफ में सबसे बड़ा प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशंस का, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और सबसे डेंजरस खुद की एक्सपेक्टेशंस।
1: और गंधर्व, इस रेस में हम इतना भागते हैं कि कभी रुककर खुद से पूछते ही नहीं हैं कि मैं जो कर रही हूं उससे मैं सच में खुश हूं कि नहीं।
0: जी बिल्कुल, यूथ होने का मतलब सिर्फ फास्ट लाइफ जीना नहीं होता। यूथ होने का मतलब होता है खुद को डिस्कवर करना, गलतियां करना, सीखना और अपना रास्ता बनाना।
1: तो अगर आज आप भी किसी प्रेशर में हो या किसी कंपैरिजन में उलझे हो, तो बस याद रखो, आपको सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी खुद को चूज करना भी एक अचीवमेंट होती है।
0: सो ब्रेक फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, फ्रॉम कंपैरिजंस और अपनी कहानी खुद लिखो। अब सुनते हैं एक ऐसा गाना जो एग्जैक्टली इसी वाइब को कैरी करता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक।
3: आकाशवाणी एफएम रेनबो,
4: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल ब्रेक फ्री कार्यक्रम चल रहा है संतोष के साथ, और आज साथ में है हमारे
5: आरजे गंधर्व। हेलो दोस्तों,
4: कैसा लग रहा है आपको?
5: जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है,
4: बिल्कुल धूम मचा के रखना है इस शो में, क्योंकि ऐसे गाने जब होते हैं, एकदम अपबीट सॉन्ग्स होते हैं, तो हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छे लगते हैं।
5: जी जी, मैं अपने आप को कैसे रोक रहा हूँ मुझे ही पता है, मुझे स्टूडियो में ही नाचने का मन कर रहा है।
4: आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं कि बस उठकर डांस करने लगते हैं और एनर्जी होती है आप लोगों में बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सुनते हैं एक और ही बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

0: हेलो दोस्तों, एक चीज़ जो हम सबको कभी ना कभी रोक लेती है वो है फियर। फेलर का फियर, फेलियर का फियर, रिजेक्शन का फियर, लोग क्या कहेंगे उसका फियर।
1: और अजीब बात पता है क्या है, कई बार हम फेल होने से नहीं बल्कि ट्राई करने से भी डर जाते हैं। यूथ का असली पावर परफेक्ट होने में नहीं है, उसका असली पावर है रिस्क लेने में, कुछ नया स्टार्ट करने में,
0: जीरो से शुरू करने में। अगर आज आपके पास कोई सपना है, कोई आइडिया है, तो उसे सिर्फ इसलिए मत रोको क्योंकि गारंटी नहीं है। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट फेल होने का नहीं, कभी ट्राई ही ना करना होता है।
1: तो ब्रेक फ्री फ्रॉम फियर। और गंधर्व, हम आपको बताएं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत सारी काबिलियत होती है, लेकिन बस वो शुरुआत करने से डरते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं गड़बड़ा ना जाए। कितने लोगों के पास इतनी सारी बिजनेस आइडियाज होते हैं जो बड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि बच्चों में ही ऐसा है, बड़ों में भी ऐसा है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है और इतना सुपर आइडिया

0: उनके दिमाग में होता है लेकिन वो कभी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते, अपनी कला दिखा नहीं पाते हैं। और बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं तो कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, फिर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे चाहे यूथ हो चाहे जिस एज के भी हो, आपको रिस्क लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं?
1: कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
0: बिल्कुल सही।

0: किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
1: कोई लुभाए शेरो शायरी से
0: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
2: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
3: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
4: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मो Cooperative Bank, enriching life.

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ। अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: दोस्तों, हर कोई सेल्फी ले रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है। सब लोग सोशल मीडिया पे उलझे हुए हैं। कंपटीशन चल रहा है, किसके लाइक ज़्यादा है, किसके कमेंट्स ज़्यादा है, शेयर ज़्यादा है, बेटर दिखने का, बेटर लगने का, बेटर प्रूफ करने का। हर कोई हाईलाइट रील दिखा रहा है।
1: और क्या होता है, ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रियल लाइफ है उसी के साथ कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन सच बताऊं, सबसे पावरफुल पावरफुल चीज़ जो है, जो आप कर सकते हैं, वो है अनअपोलोजिटिकली खुद होना। मतलब किसी की परवाह नहीं करना, आप खुद जो हैं वो होना।
0: हाँ, किसी को क्यों ब्लाइंडली फॉलो करना है?
1: हाँ
0: अपनी यूनिक क्वालिटी ढूंढो, इंडिविजुअलिटी ढूंढो, अपनी
1: हाँ
0: आवाज को पहचानो।
1: जी। और अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना कि आप क्या
0: जी
1: हैं, किस चीज़
0: जी
1: में बेटर हैं, उसमें
0: जी
1: आपको आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी जी
1: जी
0: तो आज खुद को एक प्रॉमिस करो, कंपैरिजन से ब्रेक फ्री होंगे, वैलिडेशन से ब्रेक फ्री होंगे, और खुद को एग्जैक्टली वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे हम हैं। चलिए, इस थॉट के साथ अगला गाना सुनते हैं।
1: और ये जो आप कह रहे हैं ना, खुद को एक्सेप्ट करना, यही लोग कर नहीं पाते हैं, और
0: जी
1: यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी
0: जी
1: आप ज़िंदगी
0: जी
1: का आनंद ले पाते हैं। अन्यथा
0: जी
1: तो दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरों को फॉलो करते रहेंगे, तो आप क्या हैं, आपकी खुशी
0: जी
1: कहाँ है, ये
0: जी
1: आपको कैसे पता चलेगी, है ना।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। और 12:31:32 हो रहे हैं तो समय है समाचारों का। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची के पीठ ने आज फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा है कि संवैधानिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार है। समाचार में आगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अगला समाचार, केंद्र ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस रोग का मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटे एक व्यक्ति को बेंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। अगला समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। नई दिल्ली के शांतिवन स्थित जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समाचार समाप्त हुए।

0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है म्यूजिक कैफे कार्यक्रम में। संतोष आज आपके साथ जो गाने प्ले कर रही है उसको आपको उससे आपको संतोष मिल रहा है कि नहीं आप हमें बताइए। लेकिन कैसे बताएंगे, आज तो कुछ ऐसा है कि व्हाट्सएप पर हमारे श्रोता हमसे बात नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि वो हमें जो है फ़ोन कॉल करके जो है अपनी बातें हम तक पहुँचाएँगे। तो हमारे साथ हैं हमारे आरजे दोस्त गंधर्व, जो आपको बताएँगे फ़ोन नंबर
1: 8657661071।
0: ये तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहीं बगल में जो है फोन नंबर है जी।
1: फोन नंबर कौन सा है फिर, ये आप ही बता दीजिए।
0: तो हमारा फोन नंबर है 41451541 32 और 4515 4133। ये दो नंबर्स हैं हमारे जी। हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, 4515 4132 और 33, ये नंबर्स हैं। और मुंबई के बाहर के जो श्रोता हैं वो 022 लगाना ना भूलें। तो आप हमें कॉल करेंगे, आप अपनी फरमाइश वाले प्रोग्राम के लिए भी हमें कॉल करेंगे। और आज हमारे साथ हैं गंधर्व। गंधर्व क्या कहना चाहते हैं, बातचीत हम अपने श्रोताओं से करना चाहते हैं, तो हम आज किस टॉपिक पे बात करें?
1: जी, आज म्यूजिक कैफे सेगमेंट शुरू हो गया अभी। तो बातें सिर्फ गानों की नहीं है, जिंदगी, बदलती दुनिया और हमारे आसपास जो हो रही दिलचस्प चीजों की भी है बातें।
0: जी बिल्कुल। तो आज जो है बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, एआई से लेकर अंतरिक्ष तक, मौसम से लेकर सोशल मीडिया तक, हर दिन कुछ नया होता ही रहता है। तो अगले एक घंटे तक हम बातें करेंगे और बातचीत जो है हम अपने श्रोताओं को सुनवाते रहेंगे। और फिलहाल तो अभी गाना सुनवा देते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच। रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता। टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच।
4: काठेवाडी वाघरी समाज आणि गोल्फा देवी यांचा नेमका संबंध शोधताना मिळालेली माहिती गोल्फा देवी म्हणजेच शाकंभरी आहे हे सिद्ध करणारी आहे।
5: काय ऐकली कधी तुम्ही ही कथा सात बेटांची।
6: श्रोते हो, नितीन साळुंखे यांच्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन अवश्य ऐका दररोज सकाळी 8:15 107.1 FM रेनबो आणि सकाळी 9:00 अस्मिता वाहिनी सह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वर।

0: आजकल हर जगह एक शब्द सुनाई देता है, AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
1: जी बिल्कुल।
0: और मजेदार बात यह है कि पहले लोग पूछते थे AI क्या है, और आजकल लोग पूछते हैं कि कहीं AI हमारी नौकरी तो नहीं खा जाएगा।
1: जी, AI की बात करें तो पहले लोग मशीनों से काम करवाते थे, अब मशीनें इंसानों की तरह सोचने की कोशिश कर रही हैं।
0: जी बिल्कुल। लेकिन सच ये है कि AI सिर्फ खतरा नहीं है, एक बड़ा अवसर भी है। और आज स्कूलों में बच्चे AI सीख रहे हैं, कंपनियां AI टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, और इसके आगे और भी कुछ उपयोग होते हैं।
1: हाँ, आज अगर कोई बच्चा मोबाइल पर पढ़ाई कर रहा है, कोई किसान मौसम की जानकारी ऐप से देख रहा है,
0: बिल्कुल,
1: या कोई छोटा बिजनेस ऑनलाइन बढ़ रहा है,
0: हाँ, सारे जो है स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, ये सब जो है AI की वजह से बहुत सारे नए अवसर बन रहे हैं।
1: जी, जी।
0: लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी हो जाती है कि कुछ फेक वीडियो, फेक आवाजें, गलत जानकारी,
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो इस बारे में क्या कहेंगे?
1: हाँ जी, तो वैसे सतर्क रहना चाहिए, और हमें भी पता होना चाहिए कि AI वीडियोस कौन से हैं। अफवाहों पे ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, अफवाहों पे विश्वास नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और क्या है कि AI तो है तो हमारा ही बनाया हुआ ना, तो हम उससे ज़्यादा स्मार्ट तो हैं ही, इसमें तो कोई
1: जी
0: दो राय
1: जी
0: नहीं है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो हमें जो है सही जानकारी कौन सी है, ऑथेंटिक कौन सी है और कौन सी फेक है, इन चीज़ों का हमें पता लग जाता है अगर हम थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे तो। और AI का उपयोग हम अपनी चीज़ें आसान करने के लिए कर सकते हैं, ना कि उससे डर के हम अपनी जो हमारी इंटेलिजेंस है उसे भी हम ख़त्म कर दें। क्या कहते हैं आप?
1: जी जी जी मुश्किलें बढ़ाने से अच्छा है AI का फ़ायदा उठाएं, AI से जितना आसान हो सके आपका काम वो करें। और मुझे तो लगता है जितने ज़्यादा लोग AI को पढ़ें उतना अच्छा है।
0: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में AI इतना ज़्यादा मतलब विस्तृत होने वाला है, तो ज़्यादा हमारी बातें विस्तृत ना हो, बस आप जो है हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं गाना सुनवा दीजिए, नहीं तो बातचीत का सिलसिला बिल्कुल विस्तृत होता ही रहेगा।
1: बिल्कुल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच। रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता। टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच।
6: काठेवाडी वाघरी समाज

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे। दोस्तों, किसी कारणवश हमारा व्हाट्सएप आज बंद है, तो आप जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है हिट एंड हॉट, उसमें जो आपकी गानों की फरमाइश है वो आप कॉल करके भेज सकते हैं। नंबर है 4515-4133, कृपया नोट कर लीजिए 4515-4133। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

0: एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं हमारे श्रोता और म्यूजिक कैफे कार्यक्रम चल रहा है। हमारे कई सारे श्रोताओं ने हमें फोन करके अपनी फरमाइश हमें लिखवा दी है, कौन से कार्यक्रम के लिए, हिट एंड हॉट के लिए इतने एडवांस में फोन आ रहे हैं, और हम भी उनका सम्मान करते हुए उनके फोन रिसीव करके और उनका जो है उनकी फरमाइश नोट डाउन कर रहे हैं। तो गंधर्व, गर्मी पहले भी पड़ती थी लेकिन अब मौसम का मिजाज कुछ ज्यादा ही बदलता दिखाई देता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: कहीं कहीं तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कहीं अचानक बारिश, कहीं पानी की कमी।
1: हाँ, अब क्लाइमेट चेंज किताबों का विषय नहीं रहा है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और अच्छी बात ये है, हाँ। अच्छी बात ये है कि लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, रिसाइकलिंग, छोटे छोटे ये जो बदलाव हैं अब बड़ी सोच बनते जा रहे हैं।
1: यहाँ कई शहरों में तो नो प्लास्टिक अभियान चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, और पेड़ लगाने की मुहिम भी चल रही है।
1: हाँ, और युवा वर्ग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
0: बिल्कुल, जिस काम के लिए हमारे युवा आगे आते हैं उस काम को तो सफल होना ही होता है, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं प्रकृति के साथ संतुलन से बेहतर बनेगा।
1: जी बिल्कुल।
0: और शायद इसीलिए कहा गया है कि धरती हमें विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए उधार लिया है, हम ही इसे सजाएंगे, इसे संवारेंगे, है ना?

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

0: तो हमारे श्रोता म्यूजिक कैफे कार्यक्रम सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम जो बातें करते हैं ऐसी बहुत सारी बातें हमें हमारे श्रोता भी बताते रहते हैं। तो वैसे तो आज व्हाट्सएप पे हमें श्रोताओं से कनेक्ट हम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फोन कॉल के जरिए हम अपने श्रोताओं से कनेक्ट हो रहे हैं। और आज हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी फरमाइश देने के लिए हमारे फोन नंबर, गंधर्व आप बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी नंबर है 4515-4133।
0: जी हाँ, 4133 और 4132 दो नंबर्स हैं, तो आप किसी भी नंबर पे लगाइए, आपकी बातचीत हो जाएगी और आपकी फरमाइश जो है नोट कर ली जाएगी। वैसे कहते हैं ना कि कुछ साल पहले तक खेल जो है सिर्फ क्रिकेट को ही खेल माना जाता था और उसी पर फोकस किया जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बैडमिंटन, चेस, एथलेटिक्स, शूटिंग, ये सारी जो है चीज़ें जो है शामिल हो गई हैं और बहुत विस्तार हो रहा है युवाओं का, बच्चों का हर, और ये विस्तार जो है ये दिमाग भी इससे विस्तृत होता है और आजकल के बच्चे बहुत तेज तर्राक हो रहे हैं। और दूसरी एक और बात है जिस वजह से बच्चे तेज हो रहे हैं वो क्या
1: जी
0: है?
1: आजकल वायरल होना बहुत आसान हो गया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वायरल होना बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे लगता है वायरल होना आसान है मगर विश्वसनीय होना मुश्किल है।
0: बिल्कुल सही, क्या है गलत, क्या है कितना सच्चाई है उसमें, ये जानना भी जरूरी है। और ये जो है आजकल के युवा बड़ी जल्दी ये सारी चीजें जानते हैं।
1: जी, जो भी खबर मिले उसे शेयर करने से पहले जांच जरूर करें।
0: बिल्कुल, और ऑनलाइन की दुनिया में आज लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने बहुत सारी सकारात्मक सोच को बनाए रखने वाली बातें की, लेकिन इसी के साथ गंधर्व हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी हो, चाहे हम टेक्निकली आगे बढ़ें या हम अपनी सोच से आगे बढ़ें, लेकिन इंसानियत हमारे भीतर ज़िंदा रहनी बहुत ज़रूरी है। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल, म्यूजिक कैफे का आखिरी गाना।

0: Kashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्व। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1। आपका स्वागत है हिट एंड हॉट सेगमेंट में, जिसमें हम आपकी फरमाइशें, आपके पसंदीदा गानों को प्ले करेंगे। चलिए पहला गाना सुनते हैं।

0: इस गाने की फरमाइश की थी श्रद्धा ने मुंबई से। वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है मुंबई में, हमारी फेवरेट लिसनर। चलिए अगला गाना सुनते हैं। अगला गाना सुनने से पहले, वो लड़की है कहाँ, ये गाना गाया था शान और कविता सुब्रमण्यम जी ने। दिल चाहता है मूवी का ये खूबसूरत गाना।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी श्रोताओं का स्वागत है और सबको नमस्कार है। मैं हूं आपकी आरजे दोस्त संतोष, और अगला जो गाना है ये है तुम बिन फिल्म से। इस गाने के लिए जो है गंधर्व दो लोगों ने फरमाइश की है।
0: जी जी जी
1: पंकज मोहोड़ ने अमरावती से फरमाइश की है और प्रमोद चिंचोलकर ने अकोला से फरमाइश की है। तो तुम बिन फिल्म का ये छोटी छोटी रातें गाना प्ले करते हैं श्रोताओं के लिए।

0: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल हिट एंड हॉट कार्यक्रम श्रोताओं की फरमाइश वाला कार्यक्रम। तो व्हाट्सएप पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर हमसे कैसे जुड़े? तो हमसे जुड़ सकते हैं फोन कॉल करके 4515-4132 4515-4133। ये दो नंबर हैं हमारे, एक बार फिर से सुन लीजिए 4515-4132 4515-4133। ये दो नंबर हैं और मुंबई के बाहर के श्रोता 022 हमारा एसटीडी कोड लगाना ना भूलें और हमें कॉल करके अपनी फरमाइश हमें बता दें। और अगली जो फरमाइश हमने लिया है, जो नेक्स्ट हमारा सॉन्ग है, ये है फिल्म बंटी और बबली फिल्म से। प्रकाश शिंदे ने मान खुर्द मुंबई से इस गाने की फरमाइश की है। बंटी और बबली फिल्म के गाने की जो है इसे गाने वाले हमारे सिंगर्स कौन हैं गंधर्व?
1: जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन फरमाइश हैं। गायक हैं अलीशा चिनाई, शंकर महादेवन और जावेद अली। गुलजार साहब के शब्द हैं और उसे संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। चलिए।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही बेहतरीन फरमाइश। राकेश माथुर जी पुणे से इन्होंने ये फरमाइश की थी। सुल्तान फिल्म का ये गाना था। चलिए अगला गाना सुनते हैं।
1: अगला गाना जो है गंधर्व, हम अभी नहीं सुन पाएंगे क्योंकि घड़ी की सुइयों पर नजर डाल लीजिए, और अगला गाना हम अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाएंगे। आपको श्रोताओं से इतना लगाव हो रहा है कि आप भी सोचते हैं कि हम ज्यादा गाने सुनवा दें, जैसे कि हम

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्व। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। इस सेगमेंट का नाम है हिट एंड हॉट, जहां पे हम सुनते हैं आपके पसंदीदा गाने। चलिए सुनते हैं संदीप मक्कड़ जी ने फरमाया गाना। जलंधर पंजाब से हैं संदीप मक्कड़ जी, राजा हिंदुस्तानी है फिल्म का नाम। चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: बाकी दादर स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर भेट होई ती पाय रस्त्यांचीच. रानडे मार्ग तर अस्तित्वातच नव्हता. टिळक पूल नुकताच तयार झाला होता, पण त्या परिसरात तोपर्यंत तुरळक लोकवस्तीच असल्यानं त्यावर रहदारी अशी ती नव्हतीच.
1: काठेवाडी वाघरी समाज आणि गोल्फा देवी ह्यांचा नेमका संबंध शोधताना मिळालेली माहिती गोल्फा देवी म्हणजेच शाकंभरी आहे हे सिद्ध करणारी आहे.
2: काय ऐकली कधी तुम्ही ही कथा सात बेटांची.
3: श्रोतेहो, नितीन साळुंखे यांच्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन अवश्य ऐका दररोज सकाळी 8:15 107.1 FM रेनबो आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वर.
2: चला उलगडू आजही विस्मय गाथा.
4: आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल संतोष और गंधर्व के साथ आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट कार्यक्रम. और इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जितने श्रोताओं की फरमाइश पूरी कर सकें. तो अगला गाना फिरोज सिगनपुरिया जी की पसंद पर है. ग्रैंड रोड मुंबई से इन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी. आशा भोसले जी का गाया हुआ गाना है. आशा जी की आवाज़ में उमराव जान का ये गाना बहुत ही बेहतरीन गाना है. और ये गाना हम जो है नाम जोड़ते हैं संजय दर्शन जी का. इन्होंने मालाड मुंबई से हमें कॉल किया था. तो संजय दर्शन जी और फिरोज सिगनपुरिया जी, आप दोनों के

0: continue to reel under scorching heat. People are facing intense discomfort during the day while nights to remain unusually warm with little relief. Minimum temperatures have also been reported above 30 degrees Celsius in several cities including Jaipur, Kota, Jodhpur, Nagaur, Bikaner and Dausa. Kota witnessed the warmest night with the minimum temperature hovering around 33 degrees Celsius. In view of the severe heat wave and hot winds, the administration has been taking continuous measures such as sprinkling water on roads, setting up temporary shelters and ensuring the availability of drinking water at various locations. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
1: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for heat wave conditions today over parts of Delhi, with maximum temperature expected to be hovering between 43 and 45 degrees Celsius. The Met Department has also predicted severe heat wave conditions over Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. The theme of the International Day of Yoga 2026 to be observed on the 21st of next month will be Yoga for Healthy Aging. Union Minister of State for Ayush, Independent Charge Mr. Pratap Rao Jadhav said this while attending the Yoga Mahotsav 25-day countdown to International Day of Yoga 2026 in Khajuraho today. The United States Senator Lindsey Graham has questioned Pakistan's role as a possible mediator between the US and Iran, saying it cannot be seen as neutral because of its long-standing opposition to Israel. In a social media post, Graham claimed that Iranian military aircraft were being kept at Pakistani air bases and said the comments by Pakistani leaders about Israel were disturbing. Graham also urged Pakistan to clearly respond to US President Donald Trump's call to join the Abraham Accords. The remarks came after Pakistan's Defense Minister Khwaja Muhammad Asif rejected the idea of Pakistan joining the Ibrahim Accords in an interview with a TV channel. He said Pakistan would not support any agreement that goes against the country's fundamental ideologies. India's permanent representative to the United Nations, Parvata Naini Harish, has strongly criticized Pakistan at the UN Security Council, accusing Islamabad of continuing cross-border terrorism and warning that it would face consequences for sponsoring terror activities against India. Harish made the remarks during the UN Security Council open debate on upholding the purposes and principles of the UN Charter and strengthening the UN-centered international system.
2: Pakistan, by waging several wars and inflicting unprovoked aggression against India, and through its continued sponsorship of cross-border terrorism, has violated the principles of sovereignty and territorial integrity and peaceful coexistence. Cross-border terrorism by Pakistan and its doctrine of bleeding India by a thousand cuts exposes its hollow rhetoric. Pakistan's harnessing of the malevolent forces of terrorism, religious extremism, violent radicalism, and anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. On to sports. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator match this evening at New Chandigarh Mohali. The match will start at 7:30 p.m. The winner will take on Gujarat Titans in qualifier 2 on Friday for a place in the final. In badminton, India's top player H.S. Pranoy produced a superb comeback performance to defeat Indonesia's Jonathan Christie in the opening round of the Singapore Open 2026 at the Singapore Indoor Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading in negative territory during the afternoon session today. The Sensex dipped 102 points to 75,908 and the Nifty 50 slipped by 14 points to 23,900 when reports last came in. However, in the broader market at the National Stock Exchange, Midcap 100 index was trading almost 0.3% up. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with the Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. India-Canada reaffirms shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. US Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in US-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह मौसम विभाग ने हरियाणा मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा अब समाचार विस्तार से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है एक रिपोर्ट
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है समाचार कक्ष से वैष्णवी
3: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे
5: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए
3: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया

0: कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
2: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित तीन छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट

0: चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाई कोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @xhirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

पुढ्या कळ्या

कागद पेन नहीं या वेड़ी मोबाइल सा नवा उपक्रम आए विवरण आनी मां।

0: हिरोइन अभी तू सत्यानाश
1: रूप तुला नस्ताना एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना रूप तुला नस्ताना एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना कौन हीरोइन तुझला कर लगा अग्गा
2: अब असं काय करता अजून एक काल द्या ना

5:07 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। मेरा नाम है सोनम और अभी आपने सुना शान की आवाज में डॉन का टाइटल ट्रैक। और क्योंकि स्टूडियोज में मैं आ गई हूँ अभी अभी और थोड़ी सी गर्मी तो ऑफकोर्स बाहर है, और कूल डाउन करने के लिए आपको भी जरा सा वक्त दे रही हूँ और खुद भी थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ। दो गाने प्ले होंगे बैक टू बैक और उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे हमारे थीम के बारे में। और वो थीम है ऑफकोर्स लाइफ के बारे में है, जिंदगी के बारे में है, पर एकदम भी हैवी ड्यूटी टॉपिक्स नहीं है। आप जिसमें पार्टिसिपेट कर पाए, जहां पर आपकी भी व्यूज को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसे कोई टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं आज लव यू जिंदगी में। और इसीलिए आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर। फिलहाल तो जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूँ, आशा भोसले की आवाज में है ये गाना एंड दिस इज फ्रॉम द मूवी मेरे यार की शादी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

5:20 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1। हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है लव यू जिंदगी, मेरा नाम है सोनम। अभी अभी आप सुन रहे थे शान, प्रिया, नीरज एंड शाजनीन की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार क्यों किया। और लव यू जिंदगी में आज का हमारा थीम है कि हम ऐसे किसी आई वुड नॉट से इंसान से बट इंडिविजुअल से लगाव रखते हैं जो कि इंसान नहीं है। अब वो आपका पालतू जानवर हो सकता है, या आप रास्ते पर जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए केयर कर सकते हैं, या फिर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है एंड आपकी ज़िंदगी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको हमेशा संभाल के रखते हैं या फिर बड़े प्यार से पेश आते हैं। आपको मुझे बताना है कि आपकी लाइफ में ऐसा वो कौन सा चीज़ है, या वो ऐसा कौन सा आई वुड से लिविंग एंटिटी है पर इंसान नहीं है, आपको मुझे बताना है 8657661071 पर। और जब तक आप मुझे बताते हैं, आपके लिए आ रहा है ये अगला वाला गाना, शंकर महादेवन की आवाज़ में है ये गाना फ्रॉम द मूवी लंडन ड्रीम्स। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुन रहे थे दिल मांगे मोर से वाला ट्रैक एंड 5:38 हो रहे हैं। आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर और हमने लव यू जिंदगी में आपसे ये सवाल पूछा है कि ऐसी वो कौन सी चीज है या फिर हो सकता है आपके घर में कोई पेट हो या फिर कोई ऐसे कम्युनिटी एनिमल्स हो जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं एंड अगर कोई नॉन लिविंग चीज है तो आप ऑलमोस्ट उससे ऑब्सेस्ड है कि वो अगर आपकी लाइफ में है तो आपको लगता है कि सब सही चल रहा है और अगर वो आपको ना दिखे तो आप थोड़े से बेचैन से भी हो जाते हैं। और मैसेज आया है मुझे नंदिनी का। नंदिनी कह रही है कि उनकी जो डायरी है वो उसको बहुत संभाल के रखती है, हर दिन अपडेट करती है और ये भी कोशिश करती है कि किसी के हाथ ना लगे, काफ़ी सीक्रेट चीज़ें उसमें उन्होंने लिख के रखी हैं, इसीलिए वो उस डायरी से काफ़ी ऑब्सेस्ड है। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, हो सकता है आपके घर में कोई पालतू जानवर हो या फिर कोई पक्षी हो, आप अगर उनसे भी बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं अपनी लाइफ में तो वो आप मुझे बता सकते हैं ऑन 8657661071। और जो अगला गाना है वो मैं प्ले करने वाली हूं, दिस इज फ्रॉम द मूवी काइट्स। के आवाज में है गाना, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

आतिफ असलम, अलीशा चिनॉय की आवाज में आप सुन रहे थे अजब प्रेम की गजब कहानी से वाला गाना। 5:49 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर और हमारा शो चल रहा है लव यू जिंदगी। मेरा नाम है सोनम और हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे नॉन लिविंग चीजों के बारे में या फिर आपके बेहद फेवरेट से पालतू प्राणी या फिर पक्षियों के बारे में और आप उनका कैसा ख्याल रखते हैं और वो आपके लिए आई वुड से सबसे फेवरेट चीज़ या लिविंग थिंग क्यों है। और इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि क्योंकि बाहर इतनी गर्मी बढ़ गई है तो कुछ चीज़ें या कुछ स्वास्थ्य सलाह देना चाहूँगी आपको सो दैट आप लोग ध्यान से सुने और जो भी आपके लिए आई वुड से लाभदायक होता है आप उसे फॉलो करें। और आम नागरिकों के लिए है ये, तो शरीर में जो पर्याप्त पानी की मात्रा है उसे बनाए रखें। आप प्यास ना लगने पर भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। प्यास लगना शरीर में पानी की कमी का सही संकेत नहीं है। यात्रा के दौरान पीने का पानी साथ रखें, ORS का उपयोग करें तथा नींबू पानी या फिर छाछ या लस्सी, फलों का रस जैसे घरेलू पेय पदार्थ लें। तरबूज, खरबूजा, संतरा, अंगूर, अनानास, खीरा, सलाद पत्ता आदि अधिक पानी वाले मौसमी फलों का और सब्जियों का भी सेवन करें। ढीले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। धूप में निकलते समय छाता, टोपी, कैप, तौलिया या सिर ढकने के पारंपरिक साधनों का उपयोग करें। बाहर जाते समय चप्पल या जूता पहने। रेडियो सुने, टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़ें और स्थानीय मौसम की जानकारी लेते रहें। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की वेबसाइट पर मौसम संबंधी अपडेट भी देखें और हवादार और ठंडी जगहों पर रहें। दिन के समय विशेष रूप से धूप वाली दिशा की खिड़कियां और पर्दे बंद रखें। रात में ठंडी हवा के लिए खिड़कियां खोल सकते हैं। बाहर जाना हो तो सुबह या शाम के ठंडे समय पर जाएं। बाहरी काम और गतिविधियां दिन के ठंडे समय में करें। और गर्मी किसी को भी प्रभावित कर सकती है लेकिन कुछ लोगों को अधिक खतरा होता है, यानी कि छोटे बच्चे और शिशु, गर्भवती महिलाएं, हृदय रोग या उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, बाहर काम करने वाले लोग, मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति। ठंडे स्थान से गर्म स्थान पर आने वाले यात्रियों को शरीर का वातावरण के अनुसार ढलने के लिए कम से कम एक सप्ताह देना चाहिए। और ना कि सिर्फ लोग पर बहुत सारे जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं उनके लिए भी बाहर ठंडा पानी का एक बोल रखें सो दैट वो हो, या फिर जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए भी आप पानी रख सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है। और अन्य सावधानियां भी हैं, अकेले रहने वाले बुजुर्गों और बीमार लोगों को नियमित ध्यान रखें, घर को ठंडा रखें, पर्दे, शटर या सनशेड का उपयोग करें और रात में खिड़कियां खोले रखें। दिन में संभव हो तो निचली मंजिल पर रहें। पंखे, पानी की स्प्रे बॉटल, गीले कपड़े या बर्फ वाले तौलिए का उपयोग करें। पैरों को ठकनों तक 20 डिग्री सेल्सियस पानी में रखने से शरीर जल्दी ठंडा होता है, ये ध्यान रखें। और आपको मैं अगले आर में ये भी बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना है सो दैट आप ये जो गर्मी का जो ये हीट स्ट्रोक से जो सिम्टम्स हैं इससे आप बच सके। फिलहाल तो जो अगला गाना है वो प्ले करना चाहूंगी मैं, और इस गाने को गाया है अरिजीत सिंह ने विद निकिता गांधी। दिस इज फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मक्कार। और आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

सोना मोहपात्रा एंड रविंद्र उपाध्याय की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना फ्रॉम द मूवी तलाश। 6:25 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है अंदाजे बयां। मेरा नाम है सोनम और अभी कुछ देर में आप सुनेंगे ये अगला एक गाना जिसे गाया है हर्षदीप कौर ने, और उसके बाद एक स्पॉट ब्रेक होगा छोटा सा, और उसके बाद मैं आऊंगी ऑन एयर आपसे कुछ बातें करने। और पिछले आर में जो मैं आपको बता रही थी कुछ आरोग्य सूचनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है बाहर और हीट स्ट्रोक्स के सिम्टम्स आपको ना हो या आपके आसपास लोगों को ना हो उसके बारे में, तो आपको उसके लिए कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

तरन मलिक एंड मोहित चौहान की आवाज़ में आप सुन रहे थे एक था टाइगर सी वाला गाना। और 6:40 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। हमारा शो चल रहा है अंदाज़े बयां और मेरा नाम है सोनम। और बस पिछले आर में मैं आपको बता रही थी कि कुछ तीव्र उष्णता को लेकर सूचनाएं, और तब मैंने कहा था कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, और उसकी भी एक अच्छी खासी लिस्ट है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि आप दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप में नहीं निकले। दोपहर के समय भारी काम ना करें, भीड़ भाड़ और बिना हवादार स्थानों पर जाने से बचें, और शराब, चाय, कॉफ़ी और अधिक चीनी वाले शीतल पेय से बचें। अधिक प्रोटीन वाले और बासी भोजन से भी बचें। बच्चों और पालतू जानवरों को बंद वाहन में अकेला न छोड़ें। कार्यस्थल पर ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था करें और हर 20 मिनट में पानी पीने की सलाह दें। सीधे सूर्य प्रकाश से बचें। विश्राम के लिए छायादार स्थान की व्यवस्था करें। सुबह और शाम के ठंडे समय में काम की योजनाएं बनाएं। बाहरी कार्यों के दौरान हर घंटे कम से कम 5 मिनट का विश्राम दें। कार्य की गति कम करें या अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करें। शरीर को वातावरण के अनुसार ढालने के लिए काम का समय धीरे धीरे बढ़ाएं। गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षण पहचानने का प्रशिक्षण दें। प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध रखें। गर्भवती महिलाओं और दवाइयों लेने वाले कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखें। हल्के रंग के पूरे बाजू वाले कपड़े और पैंट पहने। गर्मी के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाएं। भीड़ भाड़ के कारण गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। शारीरिक मेहनत, सीधी धूप और पानी की कमी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। प्रतिभागियों को पर्याप्त पानी पीना चाहिए और लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ इस आवर का जो सूचना था वो मैंने आपको दे दिया। गर्मी से बचने के कई सारे उपाय मैंने आपको दिए हैं। जो अगला आवर है यानी कि हिट एंड हॉट, उसमें मैं आपको बताऊँगी गर्मी का स्वास्थ्य पर प्रभाव। पर उसके पहले थोड़ा सा स्पॉट ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्ले करूंगी मैं आपके लिए बैक टू बैक गाने। और हिट एंड हॉट में आप आपकी पसंद के गाने सुन सकते हैं, पर शर्त है वो कुछ ऐसी मूवी से हो जो कि साल 2000 के बाद वाली मूवी से हैं। और अभी के लिए जो अगला गाना है वो मैं प्ले करना चाहूंगी, आरिफ लोहार और हर्षदीप कौर की आवाज़ में है गाना, दिस इज फ्रॉम द मूवी कॉकटेल। पर इसके पहले जैसे मैंने कहा कि आप सुनेंगे एक छोटा सा स्पॉट ब्रेक, तो आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

7:18 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर और हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है हम तुम। अभी अभी आप सुन रहे थे अरमान मलिक की आवाज़ में अक्टूबर मूवी से गाना, और इस गाने की रिक्वेस्ट हमको आई थी फ्रॉम सहर। और ये जो महीना है ये अक्टूबर का नहीं है, और

कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कुछ स्वास्थ्य सलाह जो हीट वेव है उसको लेकर, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो गर्मी से रिलेटेड जो प्रभाव है या हीट रिलेटेड इलनेसेस है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। पर अभी अभी शो शुरू हुआ है और आपकी रिक्वेस्ट प्ले कर रही हूँ ऑन एयर, तो अगर आपको कोई गाना सुनना है आप मुझे बता सकते हैं ऑन 8657661071 पर। और जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूँ मैं, विशाल शेखर, शिल्पा राव और मेलोडी की आवाज़ में है ये गाना, एंड दिस इज़ फ्रॉम द मूवी फाइटर। इस गाने की रिक्वेस्ट हमें आई है फ्रॉम रोहन, तो ये गाना हम उनके लिए प्ले करने वाले हैं। और इसके बाद सुनने वाले हैं आप दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में एक गाना, वो गाना कौन सा है वो जानने के लिए ट्यून्ड इन रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

7:31 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। और इस छोटे से स्पॉट ब्रेक के पहले आप सुन रहे थे जोनिता गांधी और अमित मिश्रा की आवाज में डिशरूम से गाना, और हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है हम तुम, मेरा नाम है सोनम और मैं प्ले कर रही हूँ आपकी रिक्वेस्ट ऑन एयर। जो गाना था डिशरूम मूवी का, इसकी रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम राधिका। एंड हम बढ़ते हैं आगे हमारे शो में, जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ गर्मी का स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसा हो सकता है और इसीलिए आपको क्यों सावधानी बरतनी है, और इसके बारे में भी कई सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप ध्यान से सुने तो वो आपके लिए और आपके आसपास लोगों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। शरीर का सामान्य तापमान 36.4 डिग्री से 37.2 डिग्री के बीच होता है। अत्यधिक गर्मी शरीर पर दबाव डालती है और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकती है, जैसे घमोरिया, सूजन, मांसपेशियों में ऐंठन, चक्कर आना, गर्मी से थकावट, लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक। लक्षण है चक्कर आना या बेहोश होना, मतली या उल्टी, सिर दर्द, पेशाब कम होना या गहरे पीले रंग का पेशाब, तेज सांस चलना और दिल की धड़कन बढ़ना, तबियत खराब होने पर तुरंत छाया में जाएं और पानी पिए, शारीरिक गतिविधियां रोक दें, शरीर का तापमान जांचें, मांसपेशियों में ऐंठन होने पर ORS या इलेक्ट्रोलाइट पी लें, एक घंटे से अधिक समय तक परेशानी रहने पर डॉक्टर से संपर्क करें। यदि निम्नलिखित लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। मानसिक भ्रम या चिड़चिड़ापन, त्वचा का गर्म, लाल और सूखा होना, शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना, तेज सिरदर्द, चक्कर आना या बेहोश होना, मांसपेशियों में ऐंठन, तेज और उठली सांसें, खाना खाने से इनकार करना, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, पेशाब कम होना, आंखों का सूखना, अत्यधिक नींद या बेहोशी, दौरे पड़ना, रक्त स्राव होना। और आपातकालीन सहायता में यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो जाए या पसीना आना बंद हो जाए तो तुरंत 112 पर कॉल करें। सहायता आने तक व्यक्ति को ठंडी जगह पर ले जाएं, शरीर या कपड़ों पर ठंडा पानी डालें, जितना संभव हो हवा करें। उम्मीद है आपने ये सारी चीज़ों को ध्यान से सुना होगा। और हमारा जो शो है हम तुम, यहाँ पर हम तो प्ले कर रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट ऑन एयर, पर आई होप कि ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और गर्मी से बचेंगे। फिलहाल तो आप गानों के इन लड़ियों से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जो अगला गाना है वो मैं प्ले करने वाली हूँ। इस गाने को गाया है मिथराज ने, दिस इज फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, और इस गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम आनंद। और अगर आपको भी आपके पसंद के गाने सुनने हैं तो आपको व्हाट्सएप करना है 8657661071।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Open up, sick.
2: He's gone!

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर

0: जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा, कहा यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहे। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Center approves extension of Sarthak PDS scheme to modernize public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling, Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
4: Three major reforms have been introduced in this program today. First, the government will support the transportation cost incurred in moving food grains from large FCI warehouses in the states to fair price shops across different districts and divisions. Second, there was a need to increase the remuneration of fair price shop dealers, and a decision has been taken in this regard as well. Third, efforts will be made to modernize the public distribution system through the use of technology.
3: Public distribution system. को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते
2: हैं? The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. In a social media post, the Prime Minister said the CCEA's decision will make the delivery, logistics and transportation arrangements under the PDS more transparent and efficient, while also speeding up the resolution of complaints. Home Minister Amit Shah also hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. Normal life has been severely affected due to the intense heat wave sweeping several parts of the country, including central and northwest India. People are facing difficulties as temperatures continue to remain abnormally high during both day and night. In Rajasthan, Sri Ganganagar recorded a maximum temperature of 48.2 degrees Celsius today, while several cities, including Jaisalmer, Bikaner and Churu, witnessed temperatures above 46 degrees Celsius. Night temperatures also remained high in many parts of the state. We have a report.
5: Rising day and night temperatures have affected normal life. During the daytime, movement of people on roads and in markets has become limited. In various districts, the administration is making arrangements at multiple levels to deal with the heat. Meanwhile, Chief Minister Bhajan Lal Sharma has urged the people of the state to prioritize their health and the safety of their families in view of the rising temperatures and heat wave conditions. He has appealed to the people to follow the guidelines issued by the administration and the health department. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
2: The India Meteorological Department, IMD, has said severe heat wave conditions are expected to continue over central and northwest India during the next 2 to 3 days. The weather agency has issued a red colour warning for severe heat wave conditions over east Madhya Pradesh and Vidarbha tomorrow. Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh tomorrow. Amid soaring temperatures being witnessed in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens across the country to take all possible precautions. In a social media post, Mr. Modi advised people to keep themselves hydrated and carry water if stepping out of the home. He called upon people to regularly check on elderly parents, grandparents and loved ones during the heat wave and remind them to stay hydrated, avoid stepping out during peak afternoon hours and take adequate rest. Our correspondent

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव

0: आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने असमान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी। नमस्कार जी, आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं आपका दोस्त और आपका अपना साथी। आप सुन रहे हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम को जहां लफ्ज दिल को छूते हैं और जज्बात जज्बात धड़कनों में ढल जाते हैं। जी हां, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा प्रोग्राम रंगी महफिल का।

जी हाँ, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। ये वक्त बड़ा ही हसीन है दोस्तों। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब परिंदे अपने घरों को लौट चुके हैं तो दिल चाहता है कि कुछ पल ठहर कर खुद से गुफ्तगू कर ली जाए। और ऐसे में हमारे आकाशवाणी रेनबो का ये प्रोग्राम रंग महफिल अपने आप में चार चांद लगा देता है ना। साथ ही इसमें आने वाली गज़लें जो लाजवाब हैं और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक से बढ़कर एक नगमे और गज़लें मैं इस प्रोग्राम में लेके आया हूँ। सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 29 मार्च।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, ये प्यारी सी आवाज़ जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। बिल्कुल, आपको बताएं कि रंगे महफिल किस महफिल में आज हम बात करेंगे प्यार के उस अस्सी हसीन सफर की जो कभी थमता नहीं है, जो धूप में छांव की तरह हमारे साथ हमेशा चलता है। तो एक से बढ़कर एक नगमे गजलें आपको सुनाएंगे प्रोग्राम है रंगे महफिल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। प्रोग्राम है रंग महफिल। बाहर आसमान पर रात का रंग धीरे धीरे गहराने लगा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी की यादें धीरे धीरे हमारे दिल पर हावी होने लगती हैं। इसी खूबसूरत एहसास पर निदा फाजली साहब लिखते हैं कि किसी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबां मिली है मगर दिल का राज नहीं मिलता।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक आपके साथ। मैं संजीव श्रीवास्तव संजू, और यही तो महफिल का रंग है कि जब कभी जो भी कोई हमारे पास ना हो, जो चीज़ हमारे पास ना हो, उसे भूलकर हम जिस महफिल को सजाते हैं, वही तो रंगे महफिल है। बहुत ही प्यारी सी गज़ल चित्रा सिंह और जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने

0: भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जी हाँ, पंकज उदास साहब की इस बहुत ही प्यारी सी गज़ल के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रात अपनी मखमली चादर ओढ़ कर हमारी महफिल में शामिल हो चुकी है। वक्त का पहिया थमता नहीं, हर वक्त चलता है, बस हमें उसके साथ चलना है। तो आइए चलते हैं इस प्यारी सी गज़ल के साथ। पंकज उदास साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसे गाया, और जब ये गज़ल वो गाते हैं तो बस यकीन मानिए कि दिल के बिल्कुल भीतर तक उतर जाती है ये गज़ल।

जी हाँ, समय आ गया कि मैं आपसे इजाज़त लूँ और इस महफिल से विदा लूँ, और लेकिन जाने से पहले बशीर बद्र साहब की इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, इसी वादे के साथ कि आप सुनते रहेंगे आकाशवाणी और चलते रहेंगे हमारे साथ। फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिएगा इजाज़त अगली मुलाकात के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।

मैं वक्त के साथ साथ चल रहा हूँ, जैसे जैसे काम मिलता गया और गजलें मकबूल होती गई वैसे वैसे आपको सुना रहा हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अवशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसरों और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल को मिशन मोड में बढ़ावा देने पर बल दिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में गन्ना और प्याज किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य GI टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान एक श्रमिक की मौत और दूसरे के घायल होने के मामले में दिल्ली नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कमान अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे?
2: हाँ कमान अरुण, कमान कमान कमान यार, कमान यार,
3: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
2: अरे ये क्या हुआ?
4: ये तो शम्माई बुझ गई।
2: अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिस तो नहीं गया?
1: क्या मालूम।
2: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव

सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका सीडीसी ने कांगो में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के रोग उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
0: पॉइंट नोटेड मिस्टर।

0: मंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक जिम्निख में भाग लेने के लिए साइप्रस पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास और साइप्रस के विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस को नियंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक

कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चों की देखरेख और संपत्ति में अधिकार जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों की भी समीक्षा की गई। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिविहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष और स्थायी शांति के प्रयासों पर चर्चा की। यह बैठक साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिक फोरम के दौरान हुई। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका CDC ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य GI टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800011

0: 7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य

0: मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में आतंकरोधी दस्ते और विशेष कार्यबल ने संयुक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य में कानून व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि चारों आरोपियों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में आरोपियों के सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में होने का पता चला। ये सभी संवेदनशील स्थलों की निगरानी, युवाओं की भर्ती और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य बनेगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष और स्थायी शांति के प्रयासों पर चर्चा की। यह बैठक साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिक फोरम के दौरान हुई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे गामा का, तो यूं जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: पायल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक।